0: Tech Talks.
1: मे प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर फाहिपे।
2: बिल तक दक्कम फंसे हैं गोते। मियोती फाहिपे ऐप। बिल तक अंगारा जुमला दो फाहिपे ऐप ट्रांसफर कोल्ला। देंगा महुरिया बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी। फोन, फेंग, गैस अधि मीडिया नेट बिल कस देख के ने। रीलोड, रास्टस नूनी डेटा पेक्वस नेगे नेंगे। मी हम डिजिटल वॉलेट है। देने मस देबाय वायरो बिल नो देखी गेंग लारिया वीनुए नेंगी गेंग उल्लेख कर नुचे ने। हुरिया डिजिटल पेमेंट का फाहिपे माफाही।
3: टेक के दुनिया अलगन में दतरुको किंग उलेरु टेक्नोलॉजी या साइंस के दायरा एं बड़े ती कुंफनी तक उनके नम दा बदलत का बालानु ला दो कोल मकी कुरम बावरु के कमेनो मैं हफ्ता एं खास टेक के एम में फाहुगे खबर ता अडवा हालं ती एहुं तेरी तैयार तो एहुं वीमा खबर फरवदां गिनस्ते टेक के खबर तं अडवा हालमा
4: खबर

0: Tajur, tajur. అస్సలాము అలైకుమ్. ఫజర్ తరి మిస్లాయాకుమ్ బద్దల్ కురని అలీ అబ్దో మీ కీరిత్ కుర్వాను గవారి దిఫావా ఫన్సవిస్ రసూల్ బేకలం గె రిసాలెత్తక ఏ రిసాలెత్తకం ఉరదును ఫరాయత్తక మాయ్ అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా ఫణబోయ్ కోఫాయా అజాబు గె వాహకయా అది ఏ రిసాలత్ కబూల్ కో ఏ రసూలున్న ఈమాం వి ఫరాయత్తక లిఫావా మత్వేరే నియమత్తహు గె వాహక గెనస్తే సిల్సిలాయ్ మీ సిల్సిలాగా కీరిత్ కుర్వాను గవారి దిఫావా ఎకేకి ఇబ్రత్ తెరి వాహకతక విస్ బలం దాన ప్రోగ్రామ్ షాహుల్వాని అషేక్ అబ్దుల్ జమీల్
1: ప్రోగ్రామ్ ఫట్టో అద్దెము అల్గొండ ధన్యవాదాన్ని అషేక్ ఇబ్రాహిం అహ్మద్
2: అదే అల్గొండ మే మిహార్ వాహక దక్క మీ ఫషణి సలాం లెవి సాలిహ్ అలహి సలాం బెహేగుతుం అదే అకీద్ ఖురానుగా మ్యాంగల్లా వహీ కురవా ఫొన్నని వనక దర్శల్నా ఇలా సమూద అఖాహుం సాలిహ్ హమకషవరుం ఆతిమం అల్లాహు రసూలకి గొతుగా సమూదు బాగాగ మీహు గాతం ఎబా మీహు అహ్ సాలిహ్ అలైహిస్సలాం ఫణువీమే ఏవీమ సాలిహ్ అలైహిస్సలాంగి వాహక ఫెషుమట్టక అగొండు మీ ఇబారెక్కుడు బేణు కొల్లి నమ సాలిహ్ అలైహిస్సలాంగి నసఫుడు బలార్వై సాలిహ్ బున్ ఉబేద్ బున్ మాషిఖ్ బున్ ఉబేద్ బున్ హాజిర్ బున్ సమూద్ బున్ ఆయిర్ బున్ ఇరం బున్ సాం బున్ నూహ్ అలైహిస్సలాం మీ ఎడ్రివాయతుగా మీ కలైఫానుగి నసఫుడు ఆస్ఫవాగొయ్ ఎహెన్ రివాయతి గండని సాలిహ్ బున్ ఉబేద్ బున్ ఆసిఫ్ ది మిహింగుస్ సాం బున్ నూహ్ అలైహిస్సలామ హమే నసఫుడు దెమిగెన్ దాకమ అగుణ్ మెంగ్ సాలిహ్ అలైహిస్సలాంగి వాహక దక్కాకమ వాణమ ఎబ బలాలం జిహే సమూద్ బాగాగ్ నూత సమూద్ కబీలాగ మచ్చ మీ కబీలాకి మీ హూద్ అలైహిస్సలాంగి వాహకాగస్ అగుణ్ మెంగ్ ఇషారే కురీం మీ హూద్ అలైహిస్సలాంగి ఎకలైఫానుగె మీ గబీలనుత గౌం ఆద్ బాగాగ మీహున్న సమూద్ బాగాగ మీహున్న మీ వర గ్యాగ్ గుడుమెంగ్ ఉన్న దే గబీలాకమ వర క్యారి హిసాబిగ్గ దిరివుల ముందియ దే కబీలాకమం అడగొండమెంగ్ ఇషారెక్ కురిం మీ కబీలానుత సమూద్ కబీలా నమ్మికియని ఎబా మీహుంగ కాఫకముగావా సమూద్ బుణ్ ఆమిర్ బుణ్ ఇరం బుణ్ సాం బుణ్ నూహ్ అలైహిస్సలామ నిస్బెవ్వాగుత నువత సమూద్ బుణ్ ఆద్ బుణ్ ఇవస్ బుణ్ ఇరం అండ్ నిస్బెవ్వాగుత మిహింగుస్ నూహ్ అలైహిస్సలామ హమే మీ నమ్ ఫుడు దెమిగిన్ దాగుత మిబా మీహుంగి నబీయాకి అగుణ్ కురిమిస్ ఇషారి కురి ఫదే సాలిహ్ బున్ ఉబేద్ బున్ ఆసిఫ్ బున్ నత సాలిహ్ బున్ ఉబేద్ బున్ మాషిఖ్ బున్ మిహింగుస్ నూహ్ అలైహిస్సలామ హమే దెన్ సమూదకి వర మషూర్ కబీలాయ్ సమూదకి ఎబా మీహుంగి కాఫ మీ అల్ హిజ్రుగా దిరి ఉడును అరబీంగె బైకమ మివని మీ హిజాజా తబూకా దెమెదుగావా తణికమ వే కీత్ రసూల తబూక్ హంగురామ వడాండవం మితన వెదవడాగం వాహక మీ తబూక్ హంగురామ వాహకగా అల్గొండ మిన్న హమియంగ్ ఆదే నోత సీరత్ ఫైత్తవుగా మీ వాహకత వర రంగళ హిమెనిఫావే దెన్ మిబా మిహున్ గివస్ హగేగతుగా మీ బుధంగ్ అళుకం కొంగుళున్ బైకమ వని అల్గొండ కొమ్మెసురక కురు హులాసాయ్ మీ వాహకా మిదని అల్గొండ మింగ్ వాహకతవుగా అది మీగి ఇతురు తఫ్సీల్త అన్నానికమ అల్గొండ మిమ్ మీ ఇతురు తఫ్సీల్ గణస్తేగతం హమజీఫవతి దెన్ మిబా మిహుంగ తెరే మీహకు సమూద్ బాగాగ మీహుంగె గాతవ్విస్ రసూలే గొతుగా మ్యాంగ్ అల్లా సుబ్హానహు వ తాలా ఫణువా ఫణి ఎయ్ సలాం లెవ్వి సాలిహ్ మత సాలిహ్ అలైహిస్సలాం మికలేక్ ఫాను సమూద్ కబీలా గువాలెవ్వి ఎక్కవంత అల్లాహ ఎకని అళుకం కురుమ ఎయ్ మానకి ఎ మీహుం కురి షరీఫ్ కురుమున్ ఎక్కిబావుమ అది బుదుతక దుర్హెలుమ ఎ బుదుత అల్లాహ షరీకును కురుమ దెన్ మీ గువాలెవ్వుమ జమాతెగ్ బయకు ఈమా వివాహక అడుగొండ మెండ్ ఎంగిఫావతి గిన బయకు కాఫర్ వేగింది అయి దెన్ ఏగ సౌబుం ఏకలేక్ ఫాణుగె కౌముగె మీహున్న ఏ మీహుం ఎదును ఫద మోజిజాయ్ అల్లా సుబ్హానహు వ తాలా దెక్కెవి అది ఏగ ఫహుగా ఎ మీహుం ఎదును ఉసూలెగ్ మతిన్ ఎ మీహున్నం అల్లా సుబ్హానహు వ తాలా కోఫా ఫణువి అది ఎ మీహుం హలాకు వేగింది వరకురు హులాసాయ గొతుగా మీ వాహక అగొండ్ మీ దక్కాలి అగొండ్ మింగె వాహక తగు తిరేగా మీగే ఇతరు తఫ్సీల్త అన్న ముందాను
0: మీ ఇబ్రాహిం అగొండ్ కూడేచ్చి ధన్యవాదాలు ఇంకా ఏ అగొండ్ మే హూద్ అలైహిస్సలాం వాహక నిమ్మాలీరు అగొండ ఇంకొని హూద్ అలైహిస్సలాం తబావి బయకు ఎగౌము ఈమాం బి బయకాగెన్ కరేఫాను వడాన్న వికమ ఏనుతో మీ వడాయత్మ ఫహుకం ఏ గౌం అల్లాహ ఫణువి కోఫా ఫణువేవి ఏమీమా దెన్ ఏ మీహు ఎ దియ మీహున్ तो समुद ती ती गबीला ये दिए इन्होंने एमी हूँ मैं भी की नहीं तो अब तो
3: अलवंडो अधिति हम इतर को ला अलवंड में रेगा दिवाह का निम्माली रो उन्ना नी हाकी का तुझे एकाउम नेती दिया वाह का दक्का हो देंगे एक इतरे इन बाकी थी भी मी हूँ मक्का का ऐसुले वाह का नुवत मक्का का उल्लू वाह के सालों में उन्ना नी ऐतारी हो गया वाह तक उतर रेगा वाह दक्का पा देंग कोमे का अलवंड में असलो मिया Balala or woman nang midemme Ibrahim Idali me Solih alayhi salam gin nasab fulang or woman balala or woman nang egging ibade me kuri yemi huna midin the adu baga yemi huna gulumen huri baikang ai dying asati bi baikang mimi huneki arabing baikang vis adi egging ibade then me arabing baike bunima mitanuga di tari huga wara Me Yahudina behegotung a mehung huri makaru verikama, mehung huri Arabin and huri hasada verikam gavahaka bankora heva wahake alwanda denu and egota vestari gavanko feve in the a mehung me soliho, yifanung a me gabila, eang a mehung inkarkuran, a nule baikamuga mehung, bonamundani. Then Ibn Kathir lewafa me onnani aslo eye ki haraman jehe kame nune emi hunna ki yahudin ne ki medenni yahudin ne ki emi hunna nom bayaka rangal gote nispe wakam bani wi en inkar kora bayke emi hun deke gotuga mi rasul ko jiya duniya afonu wani ishaq ge fanu ge darikolunne ehmi ma emi hun muhammad sallallahu alaihi wasallam se mi inkar kora ismail ge fanu ge darikolu ayati arabin ge tere ayati ehmi ma ha ego eye ki haram ji he kame nune emi hun ga ate ke emi kura kame ke ehmi ma mi haron me aslo mi fursatu ga mi handan kolli mi mi wahakata wes argon men nang ivi gen daane tarihu ge tere ei ulun be nune
2: den azi algon mihar balalam venumani samud kabila ge asla meduga muarrihun avidalu wa achaka balala eruga muarrihun ge meduga ikhtilaf taken e bahure e ba mihun ulun zamana ka medwes hage gatuga ikhtilaf takeve bai be kanu vidalu wani mi aad baaga ge mihun kure baaki tibi mihun kamuga ane ba be kanu vidalu wani mi amal kun kure baaki tibi mihun kamuga e ba mihun furat kooru ge hulonga wa ए सरहद वासिल विकमा ओरिएंटलिस्ट मुअर्रिखुन देकेनी मी यहूदीन कोरे बायकम गदे में अब्दुल अजीज इशारे कोरे विगोता आदि एबामी हुं एतागा वजन वेरी विकमा फलस्तीन एमी हुं नुवनकन एकम कोई हकीकता खिलाफ खियाले सबकी एगे माफ हुं मूसा अलैहि सलाम फणुबुमुं यहूदीन ए एकन एदुनुकमा यहूदीन एंगुडी मूसा अलैहि सलाम बनी इसराइल आगे मिस्र नुकुतुमु वाके यहूदीन नकी एहा हिसाबुं उफदुनु बयके ए कुरियकुं एकी यहूदीन नकी ए दन्ना बय नुने दुनियागे तारीखुगा देन एहेम वीमा यहूदीन नुवानेकमा ए वाणी अरबी नकन अलगोन में मिथागा हदामे कुरनी एई आदमागागे मीहुंगे बाकी ति मीहुंकमा बुरवेवेकमा ವಿವಾಹಕತಕಂ ಇತುರು ದಲೀಲ್ ಲಿಬೆನಿ ಸಾಲಿಹ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮ್ ಗೆ ಬಸ್ಫುಲು ಕಮ ಕೀರ್ತ್ ಕುರಾನ್ ಗ ವಾರಿದ್ ವಿಫಾವ ಆಯತಕುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹಿ ಕುರ್ವಾ ಫರ್ನನಿ ವಜ್ಕುರು ಇಸ್ ಜಾಲಕುಂ ಖುಲಫಾ ಆದಿನ್ ವಬವ್ವಾಕುಂ ಫಿಲ್ ಅರ್ದ್ ತತ್ತಖಿದೂನ ಮಿನ್ ಸುಹೂಲಿಹಾ ಕುಸೂರ ವತನ್ಹಿತೂನ ಜಿಬಾಲ ಬುಯೂತ ಫಜ್ಕುರು ಆಲಾ ಅಲ್ಲಾಹಿ ವಲಾ ತಅಥೌ ಫಿಲ್ ಅರ್ದ್ ಮುಫ್ಸಿದೀನ್ ಮಿಯಾತುಗೆ ಮಾಣೆಕಿ ಅತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಆದ್ಬಾಗಾಗ್ ಮೀಹುಂಗೆ ಖಲೀಫಾ ಎಂಕಂಗಾ ಲೆವ್ವಿಕಂ ಹಂದುಮ ಕುರಾಶೆ ಅದಿ ಬಿಮುಗೆ ಹಣಫಸ್ ಹೂಣು ತಂತಂ ಹೂಣು ಇರ ತಿಬೆ ಗಂಡುವರತಕಮ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಹದಮುವೆ ಅದಿ ಫರ್ಬತ ಕಂಡ ಕೊಣೆ ಎಯಿಂ ಫಿನಿ ಇರ ತಿಬೇಣ ಗೆತ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಹದಮುವೆ ಫಹೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ನಿಯಮಿತ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಹದಾಂ ಕುರಾಶೆ ಅದಿ ಫಾಸಿದುಣ್ಣವೆ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಬಿಮುಗಾ ಫಸಾದ ನುಕುರಾಶೆ
0: ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವಾಕ್ಫುಳ ಅಹಮದ್ ಅಬ್ದು ಕರೀಂ ಅಲಿ ಅಳ್ವಲ್ಲ ಮೋಳು ಬಹಳ
4: ಅದೇ ಅಳಗೊಂಡು ವೆಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಸೆಚ್ಚೆ ಇತರು ಕೊಲ್ಲಾಣ ದೆಮ್ಮೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಹಮದ ಶೇಖ್ ಅಜಿ ದೆಕ್ಕೆ ವಾಹ ಕೊಳಗು ತೆರೆಯ ಶಕೆನೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮೀ ಸಾಲಿಹುಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ವಾಹಕ ವೆಸ್ ಕಿರಿತ್ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಏತ ಸೂರತೆಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬಾನು ವತಾಲ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾಫ್ವೆ ಏಗೆ ತೆರೆಯಗ ಅಲ್ ಆರಾಫ್ ಸೂರತ ಹೂದ್ ಸೂರತ ಅಲ್ ಹಿಜ್ರ್ ಅಲ್ ಇಸ್ರಾ الشعراء النمل فصلت ادي القمر فدا اتا سوره الجا ميواهك الله سبحانه وتعالى ورا تفصیل کو بیان کو دیوافے دین صالح علیہ السلام کے رسالت بلائر اکل فانو رسول کما گن اللہ سبحانہ و تعالی فنو واف ونی سمود باگا کے میہوں کے گات صالح کے فانو کی وے سما امیہوں کے تیرین وڈا گن نی بے کل اللہ سبحانہ و تعالی ہوری ہا رسول بے کلم وس فنو واف ونی اے بے کے تیرے ہما اگوتا صالح کے فانو وس فنو وی امیہوں کے تیرے دین می قبیلہ یا ಸಮೂದುಗೆ ನಮೂನ್ ನಂದೆವುನಿ ಕೀ ವೆತೋವೆಸ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ವರಕ ಬಲಾಲು ಎಮ್ಮರಂಗಳು ಕಣ್ಣೆಗೆ ಐ ಬುಣವೆ ಗೊತ್ತುಗ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಕಾಫ ಸಮೂದು ಬುನ್ ಆಮಿರ ನಿಸ್ಬೆಕ್ ಕೊ ಎ ನಂ ಎ ಕಬೀಲಾ ದೈಫವಾನಿ ಅದಿ ಮಿ ನಮೂನ್ ಎಮಿಹುನ ನಂದೈಫವಾನಿ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಬಿಮುಗ ನೋತ ಎಮಿಹುನ್ ದಿರಳು ಮುಂದಿಯ ಸರಹದ್ದುಗ ಫೆಂ ಮಧುಮ್ಗೆ ಸವಬುನ್ ಕಮ ಮೊರ್ರಿಹುಂ ಲಿವ್ವಾಫವೆ ಬುಣವೆ ಗೊತ್ತುಗ ಸಮಿದಲ್ ಮಾ ಉ ಸಮದನ್ ಅರೈ ಬಹುಗ ಮಿ ಸಮದ ಬೇನುಂ ಕುರಣಿ ಕಲ್ಲ ಮಧು ಎಚ್ಚೆ ಮಧುಮ್ಗೆ ಮಾನಾಗ ಮಿಸಾಲಕ ಸಮದ ಫುಲಾನು ಏಗ ಮಾನೈಕಿ ಏನೈಕಿ ಹರಕಾತ್ಯರಿಕಮ ಹಿವಾಯಿಕಂ ಮಧು ಅನ್ನುವತ ಕೂಡ ಮೀ ಹೆಕ್ಕಮ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ಕಿಯನಿ ಸಮಿದ್ ಏಮ ಸಮೂದ ಭಾಗಗೆ ಮೀಹುನ್ನ ಎನನ್ ದೆವುನು ಸವಬಕಿ ಎ ಮೀಹುನ್ ದಿರಳು ಮುಂದ ಸರಹದ್ದುಗ ಫೆನ್ ದತಿವುನ್ನುವತ ಫೆನ್ ಮಧುಮ್ಗೆ ಸವಬುಂ ಕಮ ಮೊರ್ರಿಹುಂ ಮೆವಣಿ ಲಿವ್ವಾಫ ಮಿಮಿಹುನ್ ದಿರಿವಳಮುನ್ ಆಸ್ವಾವಾ ತಣಕಿ ಕುರಿನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವೆಸ್ ಇಶಾರೆ ಕುರವಾಫಿ ಐ ಹಿಜ್ರುಗ ಐ ಹಿಜಾಜ್ ಕರ ಶಾಮ್ ಕರೆಯ ದೆಮೆದು ಶಾಮ್ ಕರ ಹಿಜಾಜ್ ಕರಾಗೆ ರತ್ತಕ ದೆಮೆದುಗ ವಾ ಸರಹದ್ದೆಗ ಮಿಮಿಹುನ್ ದಿರಿವಳಮುನ್ ಐ ಅದಿ ಮಿಹಾರು ಎತಂ ವಣಿ ಹಿಜಾಜ ಇರುಮತಿ ಉರ್ದುನ್ಗೆ ಸರಹದ್ದು ಕಮ ಬೆಲೆವೆಣಿ ದೆಂಗ್ ಮಿಮಿಹುನ್ಗೆ ಸರಹದ್ದು ನೋತ ಮಿಮಿಹುನ್ ದಿರಿವಳೆ ತಣ ಮಿಹಾರು ವೆಸ್ ಮಿಯದುವೆಸ್ ಎತಂ ಎಬೈನ್ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ಫೆನ್ನ ಗೊತ್ತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎತಂ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಗೆತಕ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಇಮಾರತ್ತಕ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಗಂಡುವರ್ತ ಎಮಿಹುಂ ಹದಾಫ ಹುರಿ ತಂತಂ ಮಿಯದುವೆಸ್ ರಕ್ಕಾತರಿಕೊ ಬಹಟ್ಟವಾಫೆ ಎತನ ಕಿಯಣಿ ಮದಾಇನ್ ಸಾಲಿಹುಗೆ ನಮುಂ ಎತಂ ವಣಿ ಮಶೂರ್ ವೆಫ ದೆಂಗ್ ಸಮೂದ್ ಬಾಗಾಗ ಮಿಹುನ್ನ ಕೀವೆಸ್ ಅರಬಿ ಕಬೀಲಾ ತವ್ಗೆ ತೆರೆಂ ಕಬೀಲಾಯ್ ಮಿವಾಹಕ ಶೇಖ್ ಅಜೀವೆಸ್ ವಿದಾಳುವಿ ಐ ಹೂದುಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಕೌಮಫಹು ಮಿಮಿಹುಂ ಐ ಕಿರಿತ್ ಕುರ್ವಾನುಗ ವರ ಗಿನ ತಂತಾಗ ಹೂದುಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಕೌಮುಗೆ ವಾಹಕ ಗೆನ್ನೆಮಫಹು ದೆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಯಾವಿದಿಗೆ ಮಿ ಗೆನ್ನವಣಿ ಸಾಲಿಹುಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಕೌಮುಗೆ ವಾಹಕ ಏಮ ಮೀಮ್ ವೆಸೆ ಬೈಂಗೆ ಹೂದುಗೆ ಫಾಣು ಕೌಮಫಹುಗಾಕಂ ಸಾಲಿಹುಗೆ ಫಾಣು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಫೊನುವಿ ದೆನ್ ಕುರ್ವಾನು ವರ ಗಿನ ತಂತಾಂಗ ಏಕಂ ಅಳುವಲ್ ಮೆನ್ನ ಬಯಾಂಕೋ ದೆವ್ವಾಫ ಮಿಸಾಲಕ ದೆಮೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವಿದಾಳುವಿ ಆಯ ಅಲ್ ಆರಾಫ್ ಸೂರತುಗೆ ಹದ್ದಿಯ ಹತರುವನ ಆಯೆ ಮಿ ಆಯತ್ ಮೆಸೆ ಬೈಂಗೆ ಆದು ಬಾಗೆ ಫಹು ದೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ ಬೈ ಗೊತ್ತುಗ ನೋತ ಖಲೀಫಾ ಎಂ ಗೊತ್ತುಗ ಲೆವ್ವಿ ಬಯಕಿ ಸಾಲಿಹುಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಮೀಹುಂಕ ಅದಿ ಅಲ್ ಫಜ್ರ ಸೂರತುಗೆ ಹವನ ಆಯತ ನೋವನ ಆಯತ ದೆಮೆದು ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೀಕುರ ವಾಫೆ ಅಲಂ ತರ ಕೈಫ ಫಅಲ ರಬ್ಬುಕ ಬಿ ಆದ್ ಇರಮ ಝಾತ್ ಇಲ್ ಇಮಾದ್ التي لم يخلق مثلها في البلاد وسمود الذين جابوا الصخر بالواد مي آيت توغا الله أنغوا في وني
5: كاليغ فانو هدوا بركوري في كالانج آدو باغا ميهو نامدو كانتا كوري في غوي كاليغ فانو ديكي ودا نغن نومتوي أي تمتوغا وري إرم إرم كي آدو باغا ميهو نكي ديوانا ننكما وني ಏಯ್ ತಂಬತವುಗೆ ವೆರಿನ್ನೆ ಒತ್ತುಮುಗೆ ಮಕ್ಸದಕ್ಕಿ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಇಮಾರತ್ತವುಗೆ ಗದಫದ ಕಮ ಉಸ್ಕಮ ಇತಂತ ಹದಾಫ ಹೊರಲೆ ಮೊಳುಕಮು ಎನಂ ಎಮಿಹುನ್ನ ದೈಫವಣಿ ಅಲ್ಲತಿ ಲಂ ಯುಖ್ಲಕ್ ಮಿಸ್ಲುಹಾ ಫಿಲ್ ಬಿಲಾದ್ ಎ ಬಿನಾತಕಿ ರತ್ತವುಗ ಎಫದ ಬಿನಾ ಹೆದಿಫಾ ನುವ ಬಿನಾತೈಕೆ ವಸಮೂದ ಅಲ್ಲದೀನ ಜಾಬು ಸೊಖ್ರ ಬಿಲ್ ವಾದ್ ಅದಿ ಸಮೂದ್ ಬಾಗಾಗ ಮೀಹುನ ಎಕ್ವೆ ಎ ಬ ಮೀಹುನ್ನ ಕಿ ವಾದಿಗೆ ತಿರೈನ್ ಹಿಲ ಕಂಡಾಯಗೆ ಗೆನೆಸ್ ಗೆದರು ಅಳ ಉಳುನು ಮೀಹುನ್ನೆ
0: ಅಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದಾಳು
3: ಅಳಗೊಂಡು ಧನ್ಯವಾದ ಉಳುನು ಹೆಚ್ಚಿಕ್ಕಿ ಸೋಲಿಗೆ ಫಾಣುವತ ಸಮೂದ ಭಾಗ ಮೀಹು ಉಳು ತಂ ಅಳಗೊಂಡು ಅದು ಇತರು ಹೆಚ್ಚಂಗೆ ಇತರು ಕೊಲ್ಲ ಹಿವಾತಿ ಮಿಹಾರು ಜಜೀರತುಲ್ ಅರಬ್ ಅನ್ನೋತ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ಸರಹದ್ದುಗ ಇತ ಮಿಹಾರು ಮಿ ಒಣ್ಣನಿ ಏಯ್ ತಬೋಕು ಕಾರಿಗ ದೆನ್ ವಾದಿ ಕುರಾಯ ಗಡಕ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರುಗ ಎತನಕಿ ಮಿಹಾರು ಹಮ ಎಗುತ ಒತ್ತನೆ ದೆನ್ ಏಗೆ ಇತುರ ಮಿ ಎಬಾಮಿ ಹುಂ ಎತನುಗ ಉಳುನು ಖಂ ಅಂಗಾದೆ ವಾಹಕೆ ಅಳೋಡೆ ಬಹುಡೆ ನೇತ ಎವಾಹಕೆ ಕಿ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕಲೆ ಫಾನು ಅಸ್ಹಾಬು ನಾಯಕು ತಬೂಕ ವಡಾ ನೋಮು ಎಕಲೆ ಫಾನು ಹಿಜುರುಗ ಅಡುಕೊಲ್ಲೆ ವಿಹಿಂದು ಅಸ್ಹಾಬ್ ಬೇಕಲು ಎ ಸಮೂದ್ ಭಾಗ ಮಿಹುಂಗು ವಳುತಕು ಫೆಂಗ್ ಫುರಿ ফেমফরুম রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইখান ইওয়াডাং রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস ফলো করেবি তি ফেন্ত তিবাম উকালা আসে আদি সলিহ গে ফানু না কানুতা জামাল জামাল ফেন্দে ওয়াওলু তিবাম ফেন বেনু কোরা বাসে দেন একলে ফান হাদিস ফলো করবনি তিমান কলে ফানু বিরফুলু গতে তিয়াবামি হুন্ন সামুদ বাগা মি হুন্ন আকহাল আযাব আতওদানতি এম আলগন মি মিদন্ন মিউল নওয়াহকি কি মি হামা এবামি হু ওলু বিতং কাম মি দেহবগে দে
1: আনে ইব্রাহিম কোরিয়া ওয়াডা নাম কোরি গালগন কোড ইচ্চে দন ইংগাতা এই মি রেডিও আডু আসম গেন্দা বেফুলন মি উফিদি দানি সওয়াল ইংগাতা তিবেফুল মিহার আজিবেস আদি আহমদ বেস আদি ইব্রাহিম বেস এ তনকা এ তারিখা নুনিয়া এ কান্দতগা হবে কতম কুমসবারে ইখতিলাফ তাকে বিদাল দেব হিংগদ দে রেডিও অ্যাডভার্স বেফুল গে উফদিদান সওয়াল কি কিবেগেম বা মিহা গিন ইখতিলাফ তা মিগে মি উফদেনি কিরত কুরআনগা মি কান্তা মি আঙ্গাফা নুয়ে হিজে হিংগদ মি সওয়াল নুন্দ এইমা আগন্ড ধন্যবাদানি কিরত কুরআন কি তারিখি ফতেন নুনে ইগাতো কিয়ত কুরআনুগা মিয়নি কামে হিঙ্গি মিয়নি তানেগগে মিয়নি তারিখগে মিয়নি গতকাশে মিহিন কিয়ত কুরআনুগা ওয়ারিদ ফানুয়ে মিং এগবিস কামে কিয়ত কুরআন কি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা মিস্তাকুন না হিদায়াত গতুগা ফনুবি ফতকা ওয়াতি কিয়ত কুরআনুগা উন্নানি ইবরে তেরি কান্তত্তকে বয়ান কোবা মিহার কুরাওয়া ফন্নানি এগতেরেগা হিদায়াতা আগিদায়া আদি ইহুগে রাসূল বেকন্না নবী বেকলুঙ্গে গাওমতকা বেগিন দিয়ে গোতা এইং ইবুরেং হাসিল কুরমা মিকাহ কান্তত্তকা বেগতুম বিসনা ফিকুর কুরমা শাকিরুত কুরআন গাওফানি মিফাদ আনা গোতকা ওয়ারগিন ইলমেরিন সুবিদাল ফাবে এগতেরেগা আশেখ মুহাম্মদ আহমদ আল আদাবী সুবিদাল ফাবে
2: আদে আলগন মে মি বালানি সামুদ বাগাগ মি হুন আসাদি আলাইহিস সালাম বিহেগতুন দেন সামুদকি আরবি উম্মতে কম রিওয়ায়াত উগ ইবাদে তারিখি গতুন এই এ রিওয়ায়াত কা আলগন মিনা গনি মি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ হাদিসে আবু যর গ কিবে আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু কিবে রিওয়ায়াত ফোর হাদিসে এ হাদিস কি এ হাদিস গ এম ফাহাতু আননি মিনহুম আরবাতাম মিনাল আরব হুদ ওয়া সালিহ ওয়া শুআইব ওয়া নাবিয়ুকা ইয়া আবা যর মি মি গত মি হাদিস কানানি নবী বেকলং গ তেরেগ হাতর বেকলকু নত নবী না রাসূলুং গ তেরেগ মি হাতর বেকলকু এই আরবিং গ তেরেং আকম হুদু গ ফানা সালিহ গ ফানা শুআইব গ ফানা আদি আবু যররে কালে ফানু গ নবিয়া এ আলগন মেঙ্গ লবেত রাসূলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিসবেকো মি ফাহারেগ আদ বাগাগ মিহুঙ্গ দারিফাস কোলো মিগত আসওয়া উমস বেদান আদ বাগাগ মিহুঙ্গ দারিফাস কোলুং আ সামুদ বাগা আসওয়া তুমস বেদান মিকম আলগন মেন্না মি দালিউল বেনি কিরত কুরআনুগ ওয়ারিদ ফা অন বাসফুল ওয়াজকুরু ইজ জালাকুম খুলাফা মিন বাদ আদ মিগা আল খিলাফা মি গুলেনি নাসাব তানা জামান মানে কি মি খলিফা ইন বুনে আন্নেরুগা মিগা নাসাবা তানা জামানা মি কমেস একচক গুলালং এবজে মানে কি নাসাবু গতম ফহুং আউ নুনি তানুগে গতম ফহুং আউ নুনি জামানুগে গতম ফহুং আউ দেন হাকীকাতুগা সামুদ বাগাগা মিহুঙ্গে আসলে নেঙ্গে মুআরিখুম বিদালওয়ানি ইঙ্গে তো মিহাতন হোদন হোদন তাকুম ওয়ে সিদা আসলে নেঙ্গে মিমিহুঙ্গে আসলামেদু ইখতিলাফ মিওয়ান জিহেনি মিহিমবেগে খাসাকুম আল হিজরুম ফেনিফাওয়া আসার তাকুম মিগে মাসালা বড় কুরিমতিবেগে মিদে মিজামানুগে মি আর্কিওলজিস্টুম হোদি হোদন তাকুম মি মাসালা এ আমেদুগা ইখতিলাফ তা বড়ং উফেদে গোভি মাদাইন সালেহুম ফেনুন এগা মি ফেনুন আসারি হেগে তৌগা এবহরে মি আশুরিঙ্গে মি ফোকলোরুগা এ মিহু ওয়াহকা দাক্কা বহরোয়া এ মিহুঙ্গে মি লেমবেরিকামা এ মিহুঙ্গে লিউনতাকা মিকালে চি ফেনিফা এন এহেমি মি মিহুনা বেহে ওয়াহকাতা মিগত ফেনিফা ওয়াতি মি সোনিফানু কওমা মেদুগা এমমে দোসি লিউমে গতন আলগন মেনা ফেনুন লিউন এ লিউমুগা মিকহাল ওয়াহকাতাগে গ্যাসা হুরিরুগা মি আকিগে বুরি সবাইঙ্গে ওয়াহকাসা মাইনিঙ্গে ওয়াহকাসা মি ইয়ামান করাগে মি গবিলা থাকে দারিফাস কোল থাকে মি এ মিহুঙ্গে ফাইফ ফুট তো গেছে বহুরি মি সামুদ বাগাগ মিহুঙ্গে ওয়াহাকাতা বায়াম বেফা ইঙ্গে তো দেন এ গতুম মিফাদা ফাইফ ফুট তোগা এ বহুরি সা মিম দাল মি সামাদা বেসেদান নত সামুদ এগে আসলু বাহাব বেদানে মি আরে বহুগা এ এচ মি নাগানি তিঙ্গ কুরুগে ওজনুং আগন মিন্ন একং ইঙ্গে দেন নুন নাম বাইফারং এ বলিয়ে ফোরে সা মিম ওয়াব দাল ইয়া সামুদি এবসেদান এম মিকহাল গতকা লিফা এবহরে দেন ইংরেজি মাশুর ಆರ್ಕಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ಲಿನಿಕ್ ಯಾ ಬೇಫ್ಲಕ್ ಏನ ಕಣಾಳನಿ ಆ ಮೀ ಸಮೂದ್ ಭಾಗಾಗ ಮೀಹುಂ ಉಳುಣಿ ಧೂಮತುಲ್ ಜಂದಲ ಅಲ್ ಹಿಜ್ರ ದೆಮೆದು ಗಾಕಮ್ ಏಯ್ ಮೀ ತಬೂಕ್ ಹಂಗುರಾ ಮ್ಯಾಗ ರಸೂಲ್ಲಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮೀ ದೆಮೆದು ದತುರ್ಫುಲ್ ಕುರೆವಿ ಎವಾಹಕತ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೇನ್ ನೆಂಗ್ಫಾವೆ ಮೀ ಸರಹದ ಮಿಕ್ಕಿಣಿ ಅಲ್ ಜೌಫ್ ಮೀ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೇನ್ ಕುರಿಂಗ್ ಶಾರೆ ಕುರೆ ಮೇ ಬತ್ಲೈ ಮೋಸ್ಗೆ ವಾಹಕ ಏನಾಗೆ ಅರಿವಾಯತವ್ಗ ಆದ್ ಭಾಗಾಗ ಮೀ ಹುಳು ಹಿಸಾಬು ಮೀ ಮಿ ಸರಹದ ಗ್ಯಾಕಮ ಆ ಅರಿವಾ ಕೊಫ ಎಬಹುರಿ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಕಣಾಳ ಬುಣವೆಫದ ಎವ್ಎಸ್ ದಲೀಲೆ ಹಾಗೆ ಗತ್ಗಳು ನುಲಿಬೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಮೀ ಮೀ ಹುಣ್ಣಕಿ ಮೇನಿ ಬೈಕೆ ಬುಣೆ ದೇಫದ ಕೀರ್ತ್ ಕುರಾನ್ಗ ವಾರಿ ದ್ವಫಾವಾ ಸಮೂದ ಆಶೂರಿಂಗ್ ಮುಸ್ಕುಳಿ ವಾಹಕ ತಗೊಂಡ ಫೋಕ್ಲೋರ್ ತಗೊಂಡ ಮೇನ್ನ ಸಮೂದ ಏಯ್ ಎವ್ವಾಹಕ ತೇಕೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಕ ನೆತೆ ಬುಣೆ ದೇವೆ ಕಷೆ ಮೀ ಫೋಕ್ಲೋರ್ ತಗ ಇಶಾರೆ ಕುರಣಿ ಸಮೂದ್ ಭಾಗಾಗ ಮೀ ಹುಂ ಏ ಅಣ್ಣ ಇರುಗ ಎ ಮೀಹುಂಗೆ ದಿರಿಉಳು ಹೊರಿ ಗೊಯ್ ಗುರುವಾನುಗ ಸಿಫಕುರ ದಿರಿಉಳುಮ ವರ ತಫಾತು ಮೀ ದಿರಿಉಳನಿ ಮಿಮಿಹುಂ ದಿರಿಉಳನ ಸಹರಾಗ ಕಮ ಮೀ ಮರುಕಜಿ ವೆರಿಕಮೆಂಗ್ ಎ ಮಿಹುಂ ನಕ ಎಂಗಿಫೈಡ್ ನೆತೆ ಏಹಾ ಮುಸ್ಸೆಂಜೆ ನೂಣೆ ಎ ಮಿಹುಂಗ ತೆರೆಯಗ ಲೂಟುವುಂಗೊವೆ ಫೇರ್ ಮಗು ಫೇರುಂಗೊವೆ ಮಿ ಕಾಲ ಕಂದತಕ್ಕೆ ಮೀ ಏ ಆಶೂರೆಂಗೆ ಫೈಫುತ್ತವುಗ ಆಸ ಹುರಿ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೀರ್ತ್ ಗುರುವಾನುಗ ವಾರಿ ದುಫಾಣಿ ಮಿ ಬ್ಯಾಮ್ ಹುಣಕಿ ವರ ಮುಸ್ಸಂಡಿ ಬೈಕಮ ಮಿ ಬ್ಯಾಮ್ ಹಿಂ ಉಳೆ ಸರಹದ್ದುಗ ಮೀ ಕದುರುಗ್ಗೆ ದಣುತವ್ವಾಕಮ ಅದಿ ಎಮಿ ಹುಣ್ಣ ದಿಫಾವ ನೇಮಿತ್ತವಗ ವಾಹಕ ತಂಗುರಿ ಮಿಸಾರಕ ಮೀ ಎಮಿ ಹುಂ ಫರ್ಬದ ಕಂಡಾಯಂಗ ದಿರುಳನ್ನು ವಾಹಕ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೇ ಕುರಿಮೆ ಸೆ ವಾಹಕ ಶಾರೆ ಕುಫಿಂ ದೆನ್ ಮಿ ಬ್ಯಾಮಿ ಹುಂಗೆ ನೆತಿ ದಿಯ ಗೊತ್ತುಗೆ ವಾಹಕ ತವ್ವೆಸ್ ಗುರುವಾಣುಗ ಆಸ್ವಾರುಗ ಮೀ ಸಮೂದ್ ಭಾಗಾಗ ಮೀ ಹುಂಗ ವಾಹಕ ಮೀ ಆಶೂರಿಂಗ್ ಗೆಣ್ಣ ಗೊತ ಮುಳಿಂಗ್ ತಫಾತು ದೆನ್ ಅಲ್ ಹಿಜ್ರಕಿ ಹಿಜಾಜ ತಬೂಕ ದೆಮೆದುಗ ವಾತಣೆ ಮೀ ತಾನಗ ಮೀ ಕಿಯಣಿ ಮಿ ಜಮಾಣುಗ ಮದಾಯನ್ ಸೋಲಿಹ ವಲಕದ್ ಕದ್ದಬ ಅಸ್ಹಾಬುಲ್ ಹಿಜ್ರಿ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ಮಿ ಅಲ್ ಹಿಜ್ರುಗೆ ಅಡ್ಡಿಹ ವನಾಯ ಮಾನೇಕಿ ಹ ಮಕಶೋರು ಹಿಜ್ರುಗೆ ಅಹುಲ್ವರಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಯಾ ಮಿಹು ಗಾತ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾ ಫಣುವಿ ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲು ದೌಕುರಿ ಏ ಮಿತಣ ಅಲ್ ಮದೀನತುಲ್ ಮುನವ್ವರ ದೆಮೆದುಗ ಗಾಯಗಣಕ ದುರ್ಮಿಣಕಿ ತಿನ್ಸತೆ ಸಾಳಿಸ್ ಫಸ್ ಮೇಲು ಎಹಾ ಕಂಹಾವರುಗೆ ದುರ್ಮಿಣೆ ದೆನ್ ಸೌದಿಯಾಗ ಮಿ ತೈಮಾಯ ಮಿತಣ ಗಾಯಗಣಕ ಸತೇಕ ದಿಹ ಮೇಲುಗೆ ದುರ್ಮಿಣೆ ಮೇಣನೆ ಮದೀನತುಲ್ ಆಲಾಯ ಸೌವಿಸ್ ಮೇಲುಗೆ ದುರ್ಮಿಣೆ ಮಿತಾಗ ಮೇಣನೆ ದೆನ್ ಕದೀಮಿ ತಾರೀಖ್ಗ ಮದಾಯನ ಸೋಲೆಹ ಮಶೂರೆ ಫಾರಣಿ ಹಗೀಗತುಗೆ ಹಿಜ್ರುಗೆ ನಮು ಮೀನಂಗ್ ಅರಬಿಯ ಕದೀಮಿ ಅನ್ ಮೀ ನಮ ಕಮವ ಅಲ್ ಹಿಜ್ರ ವರಂಗೆಗ್ಗೊಯ್ ಹಿಜ್ರು ಅಲ್ ಹಿಜ್ರು ಮೀ ತಾರೀಫೆಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ ನೂ ಇತರು ತಡೆ ನೆ ಮೀ ರತ್ತವ್ಗೆ ಅದದು ಹತೆಕ್ಕ ಮರಿವಾಯಫಾವೆ ದೆಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಮಿಯ ದಲೀಲಿಬೆ ಇಬ್ನು ಉಮರ್ ರಿವಾ ಕುರವ ಹದೀಸೆಗ್ಗ ಅಣ್ಣನಿ ಲಮ್ಮ ಅಮರ ರಸೂಲ್ಲಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಿಲ್ ಹಿಜ್ರಿ ಫಿ ಗಜ್ವತ್ ತಬೂಕ್ ಅಮರಹುಂ ಅಲ್ಲಾ ಯಶ್ರಬು ಮಿನ್ ಬಿರಿಹಾ ولا يستقوا منها فقالوا قد عجنا منها واستقينا فامرهم ان يطرحوا ذلك العجين ويحرقوا ذلك الماء رواه ابن حبان مي حديث كما انني مان الله اذ بفكنا رسول النبي عبد الله ابن عمر روا كوروي سلام الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك هنغرام وداغن هنوا ف هجر دتر كوروي اصحاب كدن امر كوروي هجر بلتكم فمبو نهد مشا ايتاغ فم بين نكور مشه هند اصحاب دنوي تيممن ميتاغ فنو فمودي هدا فيمه ادي ಅದಿ ಎಫೆನುಗೆ ಬೇಣು ವೆಸ್ಕೊಫೀಮೆ ದೆನ್ ರಸೂಲ್ಲಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಮರು ಕೊರವಿ ಮೊಡಿಫಾವ ಫುಗ್ಗಂಡು ಉಕಾಲು ಮಶ ಎಫೆಂ ವೆಸ್ ಒಸ್ಸಾಲು ಮಶೆ ಬೈ ರಿವಾಯತು ಗಾದೆ ಮೊಡಿಫಾವ ಫುಗ್ಗಂಡು ಮೀ ಜಮಲ್ತಕ ಕಾಂದಿನು ಮಶ ಅದಿ ಫೆಂ ವೆಸ್ ಜಮಲ ಫೆಂದಿನು ಬೇಣು ಕುರ್ಮ ಎ ಮಾನೆಕಿ ಇಸ್ರಾಫ್ ಕುರುಮು ಎಕ್ಕಿ ಬಾವ ಮಟ್ಟಕ ಆಗೆ ಬೇಣು ಎ ಗೊತ್ತುಗ ಕುರುಮ ಆಕಮ ರಿವಾಯತುಗ ಆಸ ಬೋರೆ
5: ಅದೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವಾಹಕ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಹಾಮವಜ್ಜ ಅದಿ ಕುರಿಮೆಸ್ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೇಸ್ ಇಶಾರೆ ಕೊಫೆ ವಾಣಿ ಫದ ಮೀ ಸೋಲಿಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಮೀ ಹುನ್ ದಿರುಳು ಮುಂ ಸ್ವಾತನಕಿ ಹಿಜುರ್ಕ ಹೇಮ ಮೀ ಕುರ್ವಾಣು ಮೆಸ್ ಮೇತಿ ಎಂಗೆ ಏಕಂ ವಲಕದು ಕಜ್ಜಬ ಅಸ್ಹಾಬುಲ್ ಹಿಜುರುಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ಮೀ ಆಯತು ಬೈಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಾನು ವತಾಲ ಮೀ ಆಯತು ಅಂಗವಾಫೆ ವಾಣಿ ಹಮ ಕಶವರು ಹಿಜುರುಗೆ ಅಹುಲ್ವರಿಂ ವೆಸ್ ರಸೂಲುನ್ ದೌ ಕುಳೈ ಹೇಮ ಹಿಜುರುಗೆ ಅಹುಲ್ವರಿ ನಕಿ ಏಯ್ ಸೋಲಿಹುಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಮೀ ಹುಂ ಕಂ ಮೀ ಆಯತು ಎಬೈಂಗೆ ಎಹನಿ ಸೋಲಿಹುಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಮೀ ಹುಂ ಎಹೆನ್ ರಸೂಲಕು ದೋಕೊಫೆ ನುವೆ ಎ ಮೀಹುಂಗೆ ಗಾತ ಐ ಹಮೈಕನಿ ರಸೂಲಕಿ ಸೋಲಿಹುಗೆ ಫಾಣು ದೆನ್ ಎಹನ್ ವಸ್ ಮಿತಾಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಂಗವಾಫಿಮಾಣಿ ಅಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ಎಮ್ಮೆಹ ರಸೂಲನ್ ದೋಕುರು ಏಮ ಮೀ ಆಯತುಗೆ ಮಾನ ಯೋವಿಸ್ ನಾಯರು ಸೂಲೆ ಗೊತ್ತುಂ ಎ ರಸೂಲಕು ದೋಕುರು ಏಯ್ ಹುರಿಹ ರಸೂಲನ್ ದೋಕುರು ಕಮ ವಾತಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಗೊತ ಅಂಗವಾಫ ಎವನಿ
0: ಮಿಹಾಯ್ ಸಾಬು ಮೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮಾಲಾ ವಕಿವನಿ ಇರಾದ್ ಕುರವಿಯ ಅದಿವಸ್ ಮಿಫದ ಹೆಂ ಪುರುಸತಕಂ ಎದೆಮು ಅದಿ ಮೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಾಬು ಎಹಂ ತೆರಿನ ಫಾಯ್ದಾ ಹುರಿ ಮೌಲು ಮಾತಕ್ಕೆ ಗೆನಸ್ತೆವನು ಕಮ್ಗೆ ಹಿಂಗಮ ಜೆಹುಂ ವೆಸ್ಲಿಬಿಗನ್ನಮು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕುರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತೌಫೀಕ್ ಹುಸೇಳುವಿ ಅರ್ಷೇಖ್ ಅಬ್ದಾ ಜಮೀಲ್ ಉಫೆದ್ದಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಅಲಿ ಅಬ್ದಾ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.